0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ।

बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: गंदे सॉन्ग
2: यार, पागल है क्या?
1: क्यों?
2: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
1: बट व्हाई, इट्स आइकॉनिक।
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
1: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी।
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes! We killed it!
1: आगे ले गया? ट्रोल हो जाएंगे.
2: Yeah.
1: Not at all.
0: Dino, डाल दे. ट्रोल हुए तो हो जाएगी.
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे.
4: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
5: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग.
6: 89.6 पे
5: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89 डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

89.6 पे रेडियो डीएस सुनते

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल,
2: डीएस 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: तो वक्त हो चुका है 3 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तेरी तरह मुझे कौन चाहेगा। तुझे जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:20 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: दोस्तों 4:15 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं राजस्थानी गीत।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस। जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम अमन है।
2: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? हवाई माधोपुर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चिल।
2: चिल गाना सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का एक गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं। जी
2: नमस्ते, ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ।
0: ठंडीराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो से?
2: सर गाना वो है संजय के साथ मंडैया में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: दीदी, सादर नमस्कार।
2: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। काफी दिनों के बाद है आपसे वार्तालाप हो रही दीदी।
2: हाँ जी सर, थोड़ा सा कुछ ऑफिस में ऐसे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था लाइटों में।
3: जी मुझे जानकारी मिल गई थी कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए स्टूडियो अभी बंद है।
2: नहीं चल रहा था परंतु बाहर की तरफ नहीं जा रहा था, गंगापुर की गंगापुर
3: भी
2: चल रहा।
3: अभी भी मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहा, जो एप्लीकेशन आपने हमें दिया था तो उस पे नहीं आ रहा।
2: नहीं सर अब चल रही है। नहीं अब चल रहा है, आप चला के देखो वो लिंक।
3: मैंने चलाया था, अभी चला था, 5 मिनट चला था फिर बंद हो गया।
2: नहीं अब चालू हो गया दोबारा, 5 मिनट अब चला के देखो आप दोबारा, अभी बीच में बंद हो गया था।
3: जी जी
2: इसलिए
3: आज सर, आज मेरी फरमाइश है, राजस्थानी गीत है मचक मोजड़ी पेर केसरिया साफो।
2: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद, नमस्कार।

0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: गंगा बुक्सी की।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: गाना?
1: हाँ जी।
2: दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: बरसात हो रही है जी?
0: नहीं सर, नहीं बरसात नहीं हो रही।
1: चौधरी आज कर रहा हूँ भाभी जी से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो आपके रेडियो के लिए सुपर हिट लाए हैं।
0: हाँ जी बताइए।
1: गाना लिखिए, अमीर से होगा से होगा,
0: अमीर से होगा
1: या गरीब से होगा, वो वाला।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू।
0: जी वेलकम सर।

0: करीब से होगा।
1: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: नाम मेरा शुभम है।
1: कौन से बात कर रहे हो?
2: हम कैमरी से बात कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: कब्जे, बिंटू पावरा का।
1: कब्जे?
2: हाँ अभी चला दो।
1: आपकी फरमाइश पर ही गाना 4:30 बजे बाद चलेगी फरमाइश।

0: दीदी दी, हर हर महादेव,
1: हर हर महादेव। आज तो सोमवार
0: है तो कह रही थी हर हर महादेव,
1: परंतु बारिश नहीं बरसी आज।
0: दीदी यहाँ पे भी नहीं पड़ा है पानी, तो बादल हो रहा है, धूप हो रही है।
1: हाँ यही यहाँ पर हो रहा है, बादल भी हो रहा है, धूप भी हो रही है, पर बारिश नहीं बरस रही।
0: हाँ वही तो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता जाधव, वाडकला से बोल रही हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना सुनना है पीके शंकर जी की, बूटी अखिया खुल गई नदिया टूटी।
1: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रविंदर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: डेली डेली चलता।
1: कौन सा?
0: डेली डेली चलता।
1: ओके

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? नाम आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: टांडा का कोई भी सॉन्ग लगा देना।
0: कौन सा?
1: टांडा का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हिमांशु मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: श्रीराम हॉस्पिटल।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जैसा यार का।
0: कौन सा?
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: चंचल
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगा पीके।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: झलक दिखला जा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परी

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:12 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है अक्षरा शर्मा जी की। अक्षरा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सावन में मोरनी बनके मैं कसम कम नाचू।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का

आज अपने आप के ऋषि मीना के साथ बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त करके आपको लेकर चलते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम भजन संध्या की ओर। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतर।